मिल बोच है, खोज शब्द मेले खालसा सो गुरु हित लावे। झूठे गुरु के पिछे जाने की कोई जरूरत नहीं। सतगुरां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गद्दी देण लग्गिआं इक गल कही सी, कहण लगे भाई साडा शरीर अज है कल नहीं होएगा, पर मैं तुहानूं गुरु ऐसा दे चलिआं जो इत्थे उत्थे तुहाडे हमेशा ही नाल रहेगा, हमेशा तुहाडी अंग संग सहायता करेगा। ओ गुरु कौन है? शब्द ही है, होर कोई नहीं। मत मन अंदर कोई ऐसा परम आ जाए, शब्द गुरु है, पवन गुरु गुरु शब्द है, वहां गुरु गुरु शब्द सुनाया। शब्द कोई अड का गुरु नहीं, जब गुरु नानक ने नहीं आख दिता ए शब्द गुरु, जदों की सृष्टि बनी उदों का चलिया शब्द गुरु। ते साहब आखदे ने खालसा सो जो गुरु हित लावे,

आनंद आ गया। चरना दी मौज कोई रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज दा कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा है। कबीर जी नू पुछया सी भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते, नर्क भी निंद दिते, ते चरना दी मौज नू तुसी बड़ा बयान कर दे हो, ओ मौज है कैसी भला दसो तो सही। कबीर जी कहन लगे कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सकां भई चरना दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नू बयान कर भी देवां, ओ सुभाए मान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नू कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नू मिठाई खवा दो तां ओ की दसेगा, कच्छा ही मारेगा नचेगा पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरणा नू हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नू पता है भाई। जे तुम्हीं उस मौज नू मानना चाहुना है, उसका आनंद वेखना चाहुना है, तो फिर मेहनत करनी पवेगी भाई, जुड़ना पवेगा गुरु दे चरणा विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हां तां ओ गल सुभायमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालियां नू जिन्हां नू चरणा दी मौज चंगी लग गई, ओ कहंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज दी। जे तुथा है तां तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़ियां होईयां सन, ते महापुरख कहण लगे गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदा है कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहण लगे जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तो फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई भाई, चरणा दी प्राप्ति हो गई फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे पर उसदा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा हुंदा है ओ किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, ता फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, ता चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लेना, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, ता फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाई,
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ, ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आन वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साईं आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितने को नेड़े समझते हो। ता धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम

बहु परपंच कर परधन ल्यावे, सुत दारा पे आन लुटावे मन मेरे भूले, कपट ना कीजे अंत नबेरा तेरे जी पहले। जेड़ी पापा दी खटी तू खट रिया है, जिना विच्चों तेरे अनेकां रिश्तेदार, बाल बच्चे घर वाली वरसाउंदी है। याद रख ए लेखा उना कोलो नहीं मंगया जाना, अंत नबेड़ा तेरे जी पै दीजे। एदे अमोलक श्वास जो वाहिगुरु ने तैनू बख्शे, तू उना दी कीमत ही ना जान सकिया। जिवें एक कंजूस सारा जीवन कमाई करता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, ते मन विच सोचदा भाई चंगी तरह धन इकट्ठा करके ते फिर मैं इस नू भोगांगा, फिर सुख मानांगा। सोचदियां सोचदियां अंत समा आ गया। जदों अंत समा आ गया, जमदूता ने आख्या भाई हुण तेरा अंत समा है ते तू साडे नाल चलना। ता कहन लगा मैं बड़ा धन जोड़िया, बड़िया मेहनतां कीतियां हन, बड़े छल कपट करके माया कठी कीती है, मैनू भोग तां लैण दिओ, आ मैनू 24 घंटे दे।

गुरु नानक सच्ची पातशाह बख्शिश कर दिया न भाई। पही प्राप्त मानक दे होरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। ए प्राप्त होए हन तेनु अमोलक श्वास, ते जितने तक दुनिया विच तू रह रहे है। पले पुरुषां पासों कोई चंगी गल सुन पले बन, ते जे आप बोलना चाहुंदा है तो परमेश्वर की भक्ति कर, ओदा कीर्तन कर, ओदा जस कर, ताकि तेरा संसार ते आया सफल हो जावेगा। इसलिए जब लग दुनिया रहिए नानक, किस सुनिए चंगा सुनिए और चंगा ही कहिए। मिज्जत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत, जिन्हां नूं ए चंगे गुण प्राप्त हन भई, उन्हां दा संसार ते आउणा सफल सफल हो जावेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह

हम ऐसे अपराध हर एक बंदा अपने गुणा का इजहार करता है, अपने गुणा की नवाश करता है।

मैं इन्ना पुन दान करदा हां, मैं इन्ना सिमरन करदा हां। इथों तक थोड़ी जिन्नी गुरु दे दरबार विच

निमक नकीनों में फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा विसेरा जिस कर दे विच तेरे संत जन तेरे सेवक जन कथा कीर्तन कर दे ने उस घर वाल नू मैं कदी फेरा भी नहीं मारिया।

एक सच्चा सेवक अपने औगुण गुरु तो कदे भी नहीं लकाउंदा। गुरु नूं दस देंदा है वे सतगुरु मैं एडा गुनाह

ते सामने एक गुरसिख हाथ जोड़ के खलोता है, जिसका नाम इतिहास विच भाई बहोड़ू है। की आख रहा है सतगुरु, दुनिया दे सारे

मेहनत मजदूरी करन वाले अत दे गरीब सवेर दा प्रशादा शकया है पता नहीं शाम दा मिलना है जा नहीं पर मन बहुत सुखी है क्योंकि किरत धर्म दी है तू बलवांच लोक करे सब जाने जानी राम सतगुरु बख्श कर रहे ने तू जिन्ना मर्दी लुक के पाप कर लै ओ जानी जान मालक तेनू सब जगह देख लेंदा है ओदी अखों ओले तू किते भी नहीं हो सकदा सतगुरां ने आख्या गुरसिखा जे सुख चाहुंदा है मन

मालक दी नजर विच गुनाहगार ही बनी जांदा है। क्यों नहीं अपनी अवगुण गुरु नू दसदा वे सतगुरु मैं बड़ा वड्डा गुनाहगार हां, तू मैनू दुनिया विच भेजिया जाके सिमरन कर, जिथे घर परिवार बच्चे पालने ने उथे सिमरन भी करी,

हम ऐसे अपराधी। ऐ सतगुरु देख असी केहो जे अपराध कर दे, देख असी केहो जे अवगुण कर दे। सास ग्रास भगती करन वाले

बाबा जी मैं मुकदमा जितया है जानी जान बाबा जी आखन लगे भी इंज कर सारी संगत नू दस तू केड़ा मुकदमा जितया है ते सतसंगियो इन केड़ा मुकदमा जितया है किसे गरीब कोलों 50 रुपये लेने।

मोह व्रत है, अमरीक ने व्रत रखे। रात पई दुर्भाषा आया, दुर्भाषा ऋषि आया, अमरीक नाल मेल होया, ते हुण पेड़ हस उपारना ओठ नावन नदी सिधाया। दुर्भाषा ऋषि नदी ते इशनान करन वास्ते चला गया कि राजन मैं इशनान करके आना, फिर प्रसाद छकांगा ते फिर तू अपना व्रत तोड़ी। अमरीकन लगा सत बचन। ए दुर्भाषा ऋषि नदी ते पहुंचया, इशनान कीता, पर है ए मन मर्जी का मालिक दुर्भाषा ऋषि। चाहिदा तां ए सी इशनान करके जल्दी वापस आ जांदा, पर इशनान करके ए होर नित क्रिया विच रुझ गए। उधर वर्त तोड़न दा समा निकलिया जा रहा। सारिया ने ही विचार कीती कि जापदे हुण दुर्भाषा ऋषि नहीं आणगे, क्योंकि देर बहुत हो गई है। अमरीक राजा कहन लगा, मैं वचन दिता, जे दुर्भाषा जी ने प्रसादा ना छकिया ते वर्त किस तरह तोड़ा। विद्वान सज्जना नु बुलाया, सारे कहा समा बीता जा रहा, दुर्भाषा ऋषि नहीं आया, या तो भुल गए ने या किधरे होर चले गए ने, ते तुसी हुण वर्त तोड़ लो, अन्न ना खाओ, पानी पी लो। सारे की सलाह से भगत अमरीक ने

0: कलयुग में
1: कीर्तन प्रदाता गुरमुख जपिए लाए ध्याना।
0: कलयुग में कीर्तन प्रदाता गुरमुख जपिए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दर्जे।

जो कोई ओदे कोल आ गया है ओदी जुत्ती नहीं गंडी ओदी टुट्टी भी गंड दित्ती है। परमेश्वर दा भगत सी सत्संगत दुनिया कहिंदी सी।